शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Music Brigade.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

तेरे जिस पागल नाल की दसां की होई, मैं जदों दा तेनू जानदा मैनू ना जाने कोई। जानिया जावा नाम तेरे तो पहचान मैं अपनी खोई, मैं जदों दा तेनू जानदा मैनू ना जाने कोई।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi.
2: मैं हरसिमरन सिंह साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रही ने पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज वोट हरसिमरन सिंह
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह
4: कैलेडन सब्जी फार्म जिथो तुसी खरीद सकदे हो इन्हां दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां हरियां मिर्चा घिया मटर कद्दू लौकी शलगम टमाटर शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा सरों दा साग गंदलां वाला बनाया बनाया लैणा विद मक्की दी रोटी जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो इस तों इलावा स्टील सरवलो पित्तल तांबा मिट्टी हर साइज दे बर्तन फोल्डिंग बैड नवारी पलंग मूड़े साइकिल तंदूर आदि खरीदण वास्ते पहुंचो 12050 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन एयरपोर्ट एंड मेफील्ड और कॉल 9058409000 ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म
5: मैं सुखमन सिंह तुहाडा वार्ड 9 एंड 10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं एक वकील हां अते मैं कनाडा दी सब तो वड्डी लॉ फर्म विच काम करदा हां ब्रैम्पटन दे निवासी वधे हुए प्रॉपर्टी टैक्स अते क्राइम तो बहुत दुखी हां सानू रीजनल काउंसलर चाहिदा जो इन्हां मुद्दियां दी आवाज उठावे अक्टूबर 10, 11, 16, 17 दी एडवांस वोटां ते मेनू वोट पाके कामयाब करो फॉर मोर इनफॉरमेशन विजिट sukhmansanga.com ऑथराइज्ड बाय द सुखमनसंगा कैंपेन
4: सीके लिक्विडेशन ते चल रही है भारी सेल 50 डॉलर वाला कंबल 100 दे 3 ले सकदे हो 16 पीस डिनर सेट 70 वाला 35 दा गुरबानी रेडियो 100 दे 5 कंफर्ट सेट 20 डॉलर दा परफ्यूम 20 डॉलर दे 3 परफ्यूम गिफ्ट सेट मिलेगा 40 डॉलर दा पैनासोनिक दा माइक्रोवेव 79 डॉलर दा ब्रांडेड जैकेट 15 नाल दियां बच्चों दे टॉय 50% ऑफ ट्राईसाइकिल मिलेगा सिर्फ 40 डॉलर दा 7 पीस ग्लास विद विस्की बोतल सेट 20 डॉलर दा 150 डॉलर दी शॉपिंग करो ते इस सेट बिल्कुल फ्री लवो 31 मेलनी मेलनी ते स्टील ते इंडिया रियान वास्ते वधिया सूट केस खरीदना चाहुंदे हो ता आओ सीके लिक्विडेशन नंबर टू कॉल 9054055555 सीके लिक्विडेशन
6: ताजिया सब्जिया फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मन पसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी सामान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार्ट एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन कॉल 9059288557 अनाज मार्ट
7: सत श्री अकाल मैं हां हरकीरत सिंह ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਮਪਟਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ
8: ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 10 11 16 ਤੇ 17 ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ
9: Authorized by the Harkirat Singh and Kushpal Singh Pawar campaigns.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फेर खड़ गया यार।
2: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
1: सच्ची?
2: ओ मुच्ची,
1: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
2: इना कोला सालना दा तजुर्बा।
1: हुन एड्रेस भी लिखा।
2: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबीकोक, यूनिट 5।
1: कॉल 647-706-9257 647-706-9257।
3: पील रीजनल कौंसिल दी 26 अक्टूबर नू हो रही इलेक्शन मौके ब्रैम्पटन दे वार्ड 9 अते 10 तो उम्मीदवार सतपाल सिंह जौल दा नाम याद रखना जरूरी है। स्कूल बोर्ड दे ट्रस्टी वजों सतपाल सिंह जौल दियां मिसाली सेवावां तो लोकां दे मना विच तसल्ली दी लहर है, जिस करके वार्ड 9 ते 10 दे वसनीक रीजनल काउंसलर वजों सतपाल सिंह जौल दी जित यकीनी बना रहे हन। लोकां दियां समस्यावां हल करन लई सतपाल सिंह जौल वलों लगातार तत्परता नाल काम कीता जांदा है। उनां दी कैंपेन नाल संपर्क करन लई कॉल करो 416-895-3784 ते 416-895-3784।
4: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमाल लेके आए हन साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
5: 2026 ब्रैम्पटन म्युनिसिपल इलेक्शन सोमवार 26 अक्टूबर नु है। जे तुसी वोटिंग डे वाले दिन वोट नहीं पा सकदे तां तुसी एडवांस वोटिंग दे दिनां दौरान पहला वोट पा सकदे हो। एडवांस वोटिंग 9, 10, 11, 16 अते 17 अक्टूबर नु होवेगी। वीकडेज विच वोटिंग दा समा दोपहर 12 बजे तों लैके रात दे 8 बजे तक होवेगा अते वीकेंड्स नु सवेरे 10 बजे तों लैके शाम नु 5 बजे तक तुसी ब्रैम्पटन विच किसी भी एडवांस वोटिंग लोकेशन ते वोट पा सकदे हो। वोट पाउण लई जे तुहानू वोटर नोटिस मिली है तां ओ अपने नाल लैके आओ। नाल ही अपनी पहचान दा सबूत आईडी लैके आओ जिस उत्ते तुहाडा नाम अते एड्रेस लिखिया होवे। जे तुहानू वोटर नोटिस नहीं मिली तां वोट पाउण लई अपनी आईडी नाल लैके आओ। तुसी उत्थे ही अपनी वोटर इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकदे हो जां अपनी वोटर इन्फॉर्मेशन एड करवा सकदे हो। वोटिंग लोकेशन, वोटर इन्फॉर्मेशन अते कैंडिडेट्स दी लिस्ट लई brampton.ca/brampton votes ते जाओ। ए मैसेज सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वालों है। की तुसी एलर्जीज, जोड़ां दा दर्द, एसिडिटी जां गैस तो परेशान हो? की तुसी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जां थायराइड ली लगातार दवाइयां लेंदे लेंदे थक गए हो? जे हां, तां तुहाडे लई एक खुशखबरी। जेनेटिक टेस्टिंग दे माहर डॉक्टर निशा डोगरा अते उनां दी टीम ब्रैम्पटन विच तुहाडे लई ऑर्गेनाइज करन जा रहे ने एक फ्री हेल्थ सेमिनार। इस सेमिनार विच डॉक्टर निशा डोगरा तुहानू आम सेहत समस्यावां अते पॉसिबल रूट कॉजेज बारे दसणगे अते समझाउणगे की डाइट लाइफस्टाइल विच सेहतमंद बदलाव थोड़े ओवरऑल हेल्थ नू किवें सपोर्ट कर सकदे ने। अक्टूबर 25 दोपहर 2 बजे तो 4 बजे तक ग्रीन बहार रेक्रिएशन सेंटर ब्रैम्पटन विखे सीट्स लिमिटेड ने, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करो। कॉल करो 604-593-5030 604-593-5030। डॉक्टर निशा डोगरा दा फ्री हेल्थ सेमिनार, सेहतमंद लाइफस्टाइल वाल एक चंगा कदम।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: हपा के कुर्ता पजामा बह के भुलट ते उत्ता मुछ खड़ी रखनी हपा के कुर्ता पजामा बह के

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: Hi,
1: Keir. Hanji, Sasi Galdi.
0: मुझे ऐसा कुछ कहना है.
1: बोल लो जी.
0: बहुत दिनों से सोच रही हूँ पर फाइनली आई एम
1: हियर.
0: तुम्हें तो पता है कॉलेज में मुझे कितने सारे लड़के प्रपोज करते हैं.
1: अच्छा.
0: कुछ तो एक्सपेंसिव गिफ्ट भी लाते हैं पर मुझे लगता है कि मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ ज्यादा सूट करती है. आई मीन रितिका की जोड़ी कीर के साथ.
1: ओ कर जो मैडम जी, तुम तो अगे वधी जाने हो. ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਡਮ ਜੀ. ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੱਦਰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ. ਪਰ ਹੁਣ ਔਖਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ.

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Ladies and gentlemen, as I introduce to you

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।

0: अपने ब्याह या इवेंट की डेट फिक्स करो। बाकी समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री की तैयारी पूरी है। कॉल एट 416-213-1165 416-213-1165। समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री।
1: हाय, मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे। मेरी निक्की भैन का ब्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
2: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दे।
1: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल। उन्हां कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने। सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
2: हां, नाले मैं साड़ी दियां बाहां वी तां बिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां उनू भी ले दांगे।
1: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
2: आहो, अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
1: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 719 ने रोड मालचन इन अशोक प्लाजा। फोन नंबर है 9056714290।
3: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग लिए परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
4: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जसबल नू, इट्स 416-818-8900
3: और विजिट www.calidonpaving.com।
5: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल, अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045 0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
6: जे कलोटी दा पैगाम वड्डे सारिया दे नाम। जेकर ट्रैफिक टिकट, स्मॉल क्लेम, सिटी बायलॉज या मकान मालक किराएदार दे पौणे च फस गए हो, तो साडे कई वरिया दे माहर तजर्बे दा फायदा लवो। जे कलोटी अजिहा ना थोड़ी मुश्किल कर देंदा आसान। ट्रैफिक कोर्ट एडवोकेट्स, लाइसेंस बाय द लॉ सोसाइटी ऑफ अपर कैनेडा। जे कलोटी, योर रिकॉर्ड मैटर्स, यू मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर। नाउ न्यू लोकेशन 7920 हुरंटारियो स्ट्रीट, यूनिट 43 इन ब्रैम्पटन। 905-796-5656। दैट्स 905-790-5656. J. Kaloti. Tried, trusted, most effective.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: मैं सुखमन संघा, तुहाडा वार्ड 9 एंड 10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं एक वकील हाँ, अते मैं कैनेडा दी सब तो वड्डी लॉ फर्म विच काम करदा हाँ। ब्रैम्पटन दे निवासी वधे हुए प्रॉपर्टी टैक्स अते क्राइम तो बहुत दुखी हाँ। सानू रीजनल काउंसलर चाहिदा जो इन्हां मुद्दियां दी आवाज उठावे। अक्टूबर 10, 11, 16, 17 दी एडवांस वोटां ते मैनू वोट पाके कामयाब करो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट sukhmansangha.com। ऑथराइज बाय द सुखमन संघा कैंपेन।
3: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फिर खड़ गया यार।
4: ओ प्रावा, हैप्पी बड़ियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
3: सच्ची?
4: ओ मुच्ची,
3: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बड़ियाल ते सुखा टीसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, DPF क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस A to Z सर्विस करके देंगे।
4: इना कोड़ा सालना दा तजुर्बा।
3: हुन एड्रेस भी लिखा।
4: ले लिख ला, 1 Good Mark Place, Etobicoke, Unit 5।
3: कॉल 6477 0697 6477 0697
5: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक, चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 एंड 10।
6: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
7: थ्याला सुपर मार्केट, इथे तुसी इंडियन, कैनेडियन, पाकिस्तानी हर प्रकार दी ग्रोसरी हमेशा वाजिब रेट ते खरीद सकदे हो। इथे मिलदियां ने एक्स्ट्रा क्लीन चुगियां होईयां दालां, दुध, घ्यो, बटर, तारा सब्जियां, फल फ्रूट दे नाल किचन च वरतों आउण वाले बर्तन भी तुसी खरीद सकदे हो। पता है 3899 Trelawney Circle 1 Block South of Derry इन मिसीसागा, और कॉल अवतार सिंह बिल्ला थ्याड़ा 9058248960 905 8249960। थ्याड़ा सुपर मार्केट।
8: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।
9: ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ 10, 11, 16 ਤੇ 17 ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ।
6: ऑथराइज बाय द हरकीरत सिंह एंड खुशपाल सिंह पवार कैंपेन्स।
7: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल, अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 16 Intermall Drive एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 9057990045 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
10: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर, आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
6: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
11: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
12: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
13: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
11: 6477602779 और विजिट 10 Cottrell Boulevard।
7: कैलेडन सब्जी फार्म, जिथो तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां, हरियां मिर्चा, घिया, मटर, कद्दू, लौकी, शलगम, टमाटर, शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा, सरों दा साग, गंदला वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी, जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो। इस तो अलावा स्टील, सरवलो, पित्तल, तांबा, मिट्टी, हर साइज दे बर्तन, फोल्डिंग बैड, नवारी पलंग, मूड़े, साइकिल, तंदूर आदि खरीदने वास्ते पहुंचो। 1250 Airport Road in Caledon. Airport and Mayfield or call 905-840-9000. Grocery te ter sari saving li aao. Caledon Sabji Farm.
14: Peel Regional Council di 26 October nu ho rahi election mauke. Brampton de ward 9 ate 10 ton umidwar Satpal Singh Jol da naam yaad rakhna zaruri hai. School board de trustee vajon Satpal Singh Jol diyan misali sevaavan to lokaan de manan vich tasalli di lehar hai. Jis karke ward 9 te 10 de vasnik regional councillor vajon Satpal Singh Jol di jit yakini bana rahe han. Lokaan diyan samasyaavan hal karan layi Satpal Singh Jol valon lagataar tatparta naal kam kita janda hai. Unhan di campaign naal sampark karan layi call karo 416-895-3784 te 416-895-3784.
15: The 2026 Brampton municipal election is on Monday, October 26. If you can't vote on voting day, you can vote early during advance polling. Advance polling will take place on October 9, 10, 11, 18 and 17. Voting hours are weekdays from noon to 8 p.m. and weekdays from 10 a.m. to 5 p.m. You can vote at any advance voting location in Brampton. Bring your voter notice if you received one and identification showing your name and address to vote. Didn't receive a voter notice? Bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. For voting locations, voter information and a list of candidates, visit brampton.ca/Brampton Votes. A message from the City of Brampton.
16: Tusi Sunreo Chawla News Network Toronto.

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुल्यो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे
3: 6478886000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना ने ही बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई भरोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 6478886000 और विजिट NRIMB.com।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस सामग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
8: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
9: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
10: क्यों नहीं चन करे, कहे ता सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दे।
9: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
10: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
9: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
10: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
9: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर, 7198 एयरपोर्ट रोड माल्टन इन अशोक प्लाजा। फोन नंबर है 9056714290।
11: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
12: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इंपोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर,
11: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
13: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल PR कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या OCI ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो ता मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड, 4550 ईब नजरो 12 इन ब्रैम्पटन, और कॉल अवतार कटारिया 9056781200, 9056781200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
14: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ, अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ, ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार फूड ले हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स, जित्थों तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो। ग्रेट फूड, बेस्ट सर्विस ले लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो, 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन। कॉल 905-450-9054-506464।
15: Lali Sweet and Restaurant, Lali Sweet and Restaurant.
16: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320, the voice of the city.
17: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो, CNN टोरंटो।
18: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.